0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोप्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15

अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं, 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சமஸ்கிருத செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः.
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्. केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ. तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्. असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशाणां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति. प्रधानमन्त्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नाम्ना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्. वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमन्त्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां सम्बन्धित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती. उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्. स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति. सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः सम्भावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति. अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिकव्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति. भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्. तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्. नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलिपीन्स देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति. तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्रीस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः.

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरहत एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीवन।
0: कहते हैं जो जीत लेता है अपनी सुबह वो जीत लेता है अपना दिन, और जो जीत लेता है अपना दिन वो अपना भविष्य बना लेता है।
1: एंड आई थिंक फरहत फॉर अचीविंग सक्सेस सफलता आई थिंक टू डीज आर इम्पेरेटिव, डेडिकेशन एंड डिवोशन। एंड इफ यू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स टायरलेसली देर इज नो वन और नो ऑब्स्टिकल ग्रेटर देन योर ओन रिजॉल्व एंड यू कैन अचीव सक्सेस।
0: बिल्कुल, अगर आप

0: मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने और बहुत ही पॉजिटिव गीत है ये.
1: Yes, well, yes, both the artists have worked phenomenally well and amazing. So yes, let's begin our program. Well, like always, like every day, we'll first begin with the news headlines, Metro City updates, and today we have not just one but three special days that we will talk about. So listeners, this is our way of telling you that be with us for the next roughly half an hour. And today it's 22nd of July. Let's start with the headlines first.
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से. सरकार संसद में नीट से सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है. वहीं नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं.
1: इंडियन नेवी विल कमीशन INS मालवान द सेकंड ऑफ द माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एट कारवार इन कर्नाटका टुडे, मार्किंग अनदर माइलस्टोन इन इंडियाज इंडिजिनस नेवल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम. सो बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची, मालवान हैज मोर देन 80% इंडिजिनस कॉन्टेंट, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम्स इंटीग्रेशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. So the Mahi class ASW shallow watercraft, they are designed to operate effectively in coastal and shallow waters, enhancing the Navy's anti-submarine warfare capabilities.
0: और एक बहुत ही अच्छी खबर है, झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने कल गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने पर उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
1: Now we'll tell you about BRICS Health Ministers meeting. So India will host a 3-day meeting of BRICS Health Ministers in Chandigarh. This begins today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality healthcare. Well, we have a detailed report. Listen in.
2: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, healthy lifestyles, mental wellness and resilient health systems. The official program will commence with the senior officials meeting today, followed by the 16th BRICS Health Ministers meeting tomorrow, chaired by Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda, during which health ministers will deliberate on key global and regional public health priorities and consider the adoption of the 16th BRICS Health Ministers declaration. The meeting will provide an important platform for advancing the health priorities of the global south and promoting collective action towards achieving universal health coverage and the health related sustainable development goals. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
0: Aur ek aitihasik vidhyak

0: किया गया है। फ्रांस में संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
1: So listeners, the meritorious female students of Uttar Pradesh, they will be seen riding scooties and in a major initiative to boost female participation in higher education and then reduce dropouts, Uttar Pradesh government has decided to provide free scooty to meritorious female students of UP. And we have detailed report from our correspondent. Listen in.
2: Providing the details of the ambitious scheme, the Higher Education Minister of State, Yogendra Upadhyay, informed that eligible female students will be selected based on merit from the list comprising the top 5% of female graduates. Under the scheme, government will not only provide scooters, but also their insurance, registration, helmets, essential accessories and 4 liters of petrol. The income limit condition will be relaxed for disabled girl students, daughters of martyrs and daughters from destitute families. The state government states that this scheme will increase the participation of daughters in higher education, particularly by making it easier for female students from rural and remote areas to access college and universities. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: और श्रोताओं, चलिए अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ है, मुकेश पल।
3: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की ओर का रुख कर लेते हैं, जहां पे हम महानगरों की खबरों का हाल जानेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो शगुन, चेन्नई में सबसे पहले क्या है?
1: So this particular update that I have, it is about the Tamil Nadu Regional Office of the National Bank for Agriculture and Rural Development, which celebrated its 45th Foundation Day at Chennai, and this happened yesterday, Farhat. So two key publications on indicative unit cost of investments in agri and allied sector 2026-27 and the annual performance booklet on 2025 and 2026, they were released on this occasion. So National Bank for Agriculture and Rural Development's impactful developmental interventions through the Fisheries Infrastructure Development Fund in Nagapattinam and Mayiladuthurai, they were showcased through an AV presentation there. Chief General Manager of the Tamil Nadu Regional Office, H. Manoj, he said that the organization had disbursements over 73,000 crore rupees during 2025-26 across agricultural credit, rural infrastructure, fisheries as well, farmer producer organization promotion and financial inclusion. So this was all about the foundation day, the 45th foundation day of National Bank for Agriculture and Rural Development.
0: और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों को स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कल सराय कालेखा नमो भारत स्टेशन पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था।
1: सो फरहत, नाउ लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन बेंगलुरु।
0: जी,
1: Karnataka Health and Family Welfare Minister U.T. Khadar has urged the public not to panic over the detection of a few positive COVID-19 cases, and he said that such cases are expected during testing. So he was speaking to the reporters in Bengaluru yesterday. The minister, he actually said that the government and the health department, they are fully prepared to conduct screening at airports and other entry points as well. He also advised people, particularly those with low immunity, to remain cautious and then also take steps to improve their immunity, because always prevention is better than cure. Right, Farhat, over to you for Mumbai's updates.
0: और महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं।

0: हैं अब, शिक्षा की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नागपुर जिले के कटोल में एक सरकारी बागवानी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे प्रतिवर्ष 120 सीटें आवंटित होंगी। अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से संबद्ध ये महाविद्यालय विदर्भ के 11 जिलों को लाभान्वित करेगा और बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान को बढ़ावा भी देगा।
1: हैदराबाद नाउ। Telangana Chief Electoral Officer C. Sudarshan Reddy conducted a statewide video conference with district election officers and key electoral authorities to review the progress of Special Intensive Revision 2026. So joined by additional CEO Dr. Vasam Venkateshwar Reddy and Deputy CEO G.S. Cherry, the CEO mandated that all districts across a 90% completion target for the enumeration process by the end of the week. They have crossed 90% completion target. So to achieve the target, officials were instructed to expedite digitization. Second, focus on lagging urban pockets. Third, to ensure that VVIPs and VIPs, they are fully included in the electoral rolls. The CEO also emphasized that field officials must not insist on physical forms if electors have already submitted online applications. Farhat, over to you.
0: जी, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लंबित महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से 2019 तक के बकाया डीए को भी जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए का अंतर धीरे धीरे कम किया जाएगा। श्रोताओं, अब चलिए महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो शगुन, आपको पता ही है, सुबह से ही मौसम घिरा हुआ है, बादल आ रखे हैं और बारिश मुझे लगता है थोड़ी देर में हो सकती है, बहुत तेज बारिश हो सकती है।
1: We hope for it now.
0: जी, बिल्कुल। और दिन भर ये बारिश जारी रहेगी, मौसम विभाग का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की बात की जाए तो वहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
1: Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 37 degrees Celsius in Chennai. If we talk about Bengaluru, it is expected to have generally cloudy sky and there is a possibility that it will rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius, maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad again is expected to have a generally cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature, minimum temperature will be around 23 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees Celsius in Hyderabad.
0: और अब मौसम के बाद बात कर लेते हैं फ्रूट्स की, यानी कि फलों की। तो जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी शगुन, फलों में आपको क्या चीज पसंद है?
1: I'll be a bit biased and I'll say mango.
0: Mango, तो चलिए आज आप ही के लिए हम लोग विश्व मैंगो दिवस मना लेते हैं। जी, दुनिया का कोई भी फल किसी देश की पहचान से उतनी गहराई से नहीं जुड़ा जितना आम भारत से जुड़ा हुआ है। और सभी की पसंद जो होता है वो आम होता है।
1: जी,
0: भारतीय
1: सफेदा एंड अदर,
0: सफेदा, अल्फांजो,
1: केसरी,
0: बिल्कुल, और लंगड़ा आम तो मुझे बहुत पसंद है। जी, तो भारतीय जीवन में आम उत्सव की तरह से ही जुड़ा हुआ है। संस्कृत ग्रंथों से लेकर मुगल बागों तक, कालिदास की कविताओं से लेकर अकबर के लाख बाग तक, और गांव के बगीचों से लेकर पांच सितारा होटलों की मेज तक, आम जो है वो भारतीय संस्कृति, स्वाद और स्मृतियों का एक हिस्सा है।
1: सो आई रिसेंटली अटेंडेड अ मैंगो फेस्टिवल एंड माय होल माउथ इज एक्चुअली फिल्ड विद सलाइवा, आई एम क्रेविंग मैंगो नाउ। सो फरत, नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेट्स, एज यू ऑल्सो मेंशन्ड, इंडियाज रिच मैंगो हेरिटेज, एंड पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट गोवा, नो मैंगो, नो अदर वैरायटी ऑफ मैंगो इज मोर चेरिश्ड देन द मानकुरद। So famous, it's actually famous for its irresistible aroma, of course, its rich sweetness and its unique flavor. Well, it's not just a fruit, it is a symbol of Goa's agricultural pride and the cultural identity as well. And well, we have a special feature on this particular variety. So now let's listen in.
2: Every summer, the arrival of

0: Manakurad mango marks one of Goa's most awaited seasons. Popularly known as King of Goan Mangoes, Manakurad has earned a loyal following for its distinct taste, fragrance, and smooth texture. Recognizing its importance, the Goa government has stepped up efforts to encourage Manakurad cultivation. Financial assistance of up to 2 lakh rupees per hectare is provided for plantation in rocky terrain, while farmers in other areas receive support of 60,000 rupees per hectare. An additional subsidy is also available for digging planting pits, making orchard development more affordable. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said the government is working to address farm labor shortages and revive Khajan farming, paving the way for higher agricultural production. The National Mango Day, Goa celebrates not only the delicious Manakurad, but also the farmers whose dedication keeps this treasured legacy alive for generations to come. For Aasabere, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, पड़जी।
1: और चलिए श्रोताओं, अब इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है, जो भारतीय होने का एक एहसास दिलाती है। उसी तिरंगे झंडे के लिए 22 जुलाई यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार तिरंगे को अंगीकार किया गया था। 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया। इस बैठक में आजाद भारत के लिए झंडे का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलावों के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाएगा और इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने।
2: Well, yes, the day commemorates the evolution of the Tiranga and its role in inspiring India's freedom movement before becoming the official flag of independent India. So, Bhikaji Kama, Madam Bhikaji Kama unfurled the Indian flag at Stuttgart, Germany as well, making the first Indian flag hoisted on a foreign soil. And finally, on 15th August 1947, the Tiranga was first hoisted as the national flag of independent India.
1: और जब भी तिरंगे की बात होती है तो अपने आप जो आज़ादी का दिन है वो याद आ जाता है। तो क्यों ना ये जो गीत बज रहा है अंडर प्ले में, इसे सुन लेते हैं।

और बस हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि केसरिया में शौर्य की आंच है, सफेद में शांति का प्रकाश है, हरे में खेत खलियान की आशा है, चक्र में समय का एहसास है।

0: सर उठा के लहराए जो गंगा में, वो मेरा तिरंगा मेरा अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। और आइए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ब्रेन डे की बात करते हैं।
1: सो फरत, एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेन डे, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन हाउ टू कीप आवर ब्रेन हेल्थी, well, of course, and preventing neurological disorders. And this year's theme, let's focus on that, it's brain health for all ages, no matter what, for all ages, and this is set by World Federation of Neurology.
0: बिल्कुल, और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बड़ी गलतियां आजकल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, वो है नींद पूरी ना लेना, स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना।
1: सो आई थिंक it if to prevent neurological disorders, meditation, stuff like yoga and eating fresh fruits and vegetables every day, that will definitely help you all.
0: बिल्कुल, और बच्चों से मोबाइल तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि ये भी ब्रेन पर

0: बहुत ही बुरा जो है असर डालता है,
1: लीडिंग कॉज ऑफ ब्रेन फॉग एक्चुअली,
0: क्योंकि हमें ब्रेन को भी आराम देना बेहद जरूरी है, 24 घंटे ये काम करता है, तो अगर आप सोएंगे, रेस्ट लेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो ब्रेन भी जो है आपका हेल्दी रहेगा।
1: सो लिसनर्स थिंक अबाउट योर ब्रेन, वर्क्स टायरलेसली फॉर 24 आवर्स,
0: आज ही से शुरू जो है आप कर दीजिए मेडिटेशन
1: जी।
0: और अब आगे बढ़ते हैं, 1981 की बात कर लेते हैं। आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था।
1: इन 1933 एविएटर वाइली पोस्ट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड।
0: 1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू हुई।
1: इन 1934 नोटोरियस अमेरिकन गैंगस्टर जॉन डिलिंगर वाज शॉट एंड किल्ड बाय फेडरल एजेंट्स आउटसाइड शिकागोस बायोग्राफ थिएटर।
0: और 2019 में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे की। वो देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रहे। संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना निर्णय लिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की, और इसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यक की पक्षधारता के लिए वो काम करने लगे।
1: वेल लेफ्टिनेंट इंदिरा लाल रॉय, वेल टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हिम, इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग एस, अचीविंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एयर कॉम्बैट विक्टरीज एट अ वेरी यंग एज, सो हिज करेज, स्किल एंड सैक्रिफाइस दे कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस, सो वी पे हम्बल होमेज टू दिस लेजेंडरी हीरो हु टच्ड द स्काइज विद अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। अ रिमार्केबल यंग मैन हु सोर्ड इनटू द स्काइज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज इंडियाज सोल फ्लाइंग एस।
0: बिल्कुल शगुन, और आज ही के दिन हमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त ने भी अलविदा कहा। इन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी और साथ ही मजदूरों के हित के लिए सदैव कार्य करते रहे। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को 5 बार कोलकाता का मेयर चुना गया। इन्होंने एक अंग्रेज युवती नेली सेनगुप्त से विवाह किया था, जिसने देश को स्वाधीन कराने के लिए अपने पति के समान ही जेल की सजाएं भोगी।
1: Well, today, listeners, we are also remembering Telugu poet and writer Dasarathi Krishnamacharya. He held the titles Abhyuday Kavi and Kalla Prapurna. He was awarded the Sahitya Academy Award as well. So, he is popularly known as Dasarathi, and he gained fame through his revolutionary poetry. His first book, Agnidhara, Flowing Fire, it was published in 1947. His other notable works, they include Punar Navam and Rudravina in 1950. So, Garib Gitalu, it is a Telugu translation actually of the poems of Urdu poet Mirza Abdul Asadullah Khan Ghalib. He also composed lyrics for numerous Telugu films. He wrote lyrics for many Telugu movies, with his debut being Vagdanam. Over the course of his career, he wrote lyrics for approximately 2,000 songs in the Telugu film industry. His notable works, they include Pooja in 1975.
0: भारत के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी की भी आज पुण्यतिथि है। वो भारत की प्रथम महिला विधायक थी। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों का काफी प्रभाव था। इन्होंने समाज सेवा में महिलाओं और बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं भी की शुरुआत की थी।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग सीवी श्रीधर, द मास्टर स्टोरी टेलर हु ब्लेंडेड रोमांस, इमोशन एंड म्यूजिक इनटू टाइमलेस इंडियन सिनेमा। One of the most iconic writer-directors, known for emotional storytelling, romantic themes as well, and melodious films, his movies redefined Tamil and Hindi cinema in the golden era. So in all his films, he had the perfect blend of stars, of melodrama and melodious songs. Film creators, film enthusiasts, this is the recipe for a good film. Perfect blend of stars, melodrama and melodious songs as well. Sridhar, his career spanned over 4 decades. He has always been lauded for understanding the pulse of the audience and then creating movies catering to the common man. So Sridhar, C.V. Sridhar, was undoubtedly a prolific writer. His works, they include so many movies. And, I was talking about blending so many emotions and romance and music into timeless Indian cinema, which continues to inspire us.
0: बिल्कुल, और आज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह का जन्मदिन है। उनके काम की विशिष्टता उसके ब्यूरो में रहा करती थी। बहुत मामूली सी समझने वाली बेजान मिट्टी उनके हाथ के संस्पर्श से जीवंत और जागरूक होती थी। हिम्मत शाह अपने रेखांकन रेखाओं से बनाते हैं, लेकिन अमूर्त किस्म की लगने वाली इन रेखांकनों से

0: भाव उमड़ पड़ते हैं और उनकी कलाकृतियों में कुछ कलाकृति कागज़ को सिगरेट से जलाकर बनाई गई हैं। और आइए अब हम बात कर लेते हैं भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मुकेश चंद्र माथुर की।
1: हाउ ट्रू।
0: जी, पेशे से एक इंजीनियर के घर पर पैदा होने वाले मुकेश के अंदर वो सलाहियत थी कि वो एक अच्छे गायक बनकर उभरे और यही हुआ।
1: So Mukesh's interest in the arts was seen very early. As a child, he used to listen in on his sister when the music teacher would come to teach his sister. And as he grew older, he became completely mesmerized by the songs of K.L. Sehgal. He used to spend a lot of time imitating him.
0: बिल्कुल शगुन। और निर्दोष फिल्म में मुकेश ने अदाकारी करने के साथ साथ गाने खुद गाए और इसके अलावा माशू का आह अनुराग और दुल्हन में बतौर अभिनेता भी काम किया। केएल सहगल से मुतासिर मुकेश ने अपने शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज में गाने गाए। मुकेश का सफर 1941 से शुरू हो गया और एक गायक के रूप में 1945 में फिल्म पहली नजर में उन्होंने गाना गाया।
1: सो वेल You were telling that he has worked in other capacities as well, such as an actor, music director and producer. Well, we know him as a playback singer, of course. And then after he finished his 10th standard, actually, he got a job working for the Delhi Department of Public Works. But even while working, his interest was in arts then also. And he used to experiment with recordings and worked hard to improve his singing while working as well.
0: So, Shagun, we have prepared a medley for him. So, why don't you listen to him?
1: Sure.
2: कहीं

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर।

0: कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
3: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
4: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान

0: सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow

0: रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में हैं। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन के इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहु

0: पक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवेदी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छतरू इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097, जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu has called for expanding Indian-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the Indian-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at ASEAN Post-Ministerial Conference with India 2026 in Philippines today, Dr. Jaishankar said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. He said that both India and ASEAN are optimistic about their prospects and therefore the focus should be on opportunities even while addressing challenges. Dr. Jaishankar noted that this year is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation and it is a timely reminder of the progress ASEAN and India can make together towards a more stable and secure future. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपिये में व्यवसाय फोरम में उत्तरी मैसिडोनिया से भारत के साथ निवेश संबंधों में विस्तार का आह्वान किया। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। अमरीका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुडा से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसिडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया है। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसिडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसिडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ

0: मैसिडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे ज्यादा असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष है। ये याद दिलाने का अवसर है कि भारत और आसियान देश अधिक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर प्रगति के लिए मिलकर प्रयास कर सकते हैं। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए 2 दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती हुई भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया।
4: भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश व्यापार नीति समीक्षा के माध्यम से व्यापार और संबंधित नीतियों का निरीक्षण करते हैं। भारत का दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और व्यापार नीतियों में परिवर्तन के कारण व्यापक बदलाव हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत स्वदेशी व्यवसायियों की वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ाने के लिए व्यापार समझौता का विस्तार कर रहा है। उसने वैश्विक व्यापार मुद्दों के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। समीक्षा के दौरान विकासशील देशों से सहयोग पर भारत के विशेष महत्व पर भी बल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। बच्चों पर डिजिटल सामग्री के हानिकारक असर को

0: लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया के अनेक देश सोशल मीडिया तक पहुंच रोकने के प्रयास में लगे हैं। अमरीकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। दोनों देश हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना ने ईरान पर फिर हमला किया। ये हमले वाणिज्यिक जहाजों को धमकी देने, ईरान की क्षमता को और कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। इन हमलों में सैन्य संचालन केंद्र, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और सैन्य रसद अवसंरचना को निशाना बनाया गया। ईरान ने पिछले 3 महीनों में इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरने वाले 30 से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कोपिये में व्यवसाय फोरम में उत्तरी मैसेडोनिया से भारत के साथ निवेश संबंधों में विस्तार का आह्वान किया। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला उन्नति हुडा से होगा। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the world news. The headlines. President Draupadi Murmu invites North Macedonia to expand investment ties with India at business forum in Skopje. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. New Delhi reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. France bans social media for children under 15. US carries out 11th consecutive night of attacks against Iran. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both the countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said

0: கேட்ட அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत चीन संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गहरे द्विपक्षीय सहयोग के लिए सीमा पर शांति मूलभूत शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में उठाए गए कई विश्वास निर्माण उपायों का स्वागत किया, जिनमें सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत, वीजा व्यवस्था में संशोधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार का पुनः शुरुआत शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति को दोहराया कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कूटनीति की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपियो में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत ने कल चंडीगढ़ में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पूर्वक

0: मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए लगातार कल भी हवाई हमले किए। कमांड ने सैन्य संचालन केंद्र, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर और प्रबंधन इकाई को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने पिछले 3 महीनों में महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले 30 से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया था। इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी और आवाजाही को नुकसान पहुंचा। अमरीका ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष की लागत अब तक $37.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विनियोग समिति के समक्ष इसकी जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 707 अंक गिरकर 76,762 जबकि निफ्टी 196 अंक फिसलकर 23,991 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल तक मूसलाधार वर्षा और संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा जल भराव की आशंका व्यक्त की है। केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज और कल बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class, INS Malvan, at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, the Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbharta and said that INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft, built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat Mission, uses more than 80% indigenous equipment and technology. The three-day meeting of BRICS health ministers has begun in Chandigarh. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Earlier, India successfully hosted the BRICS meeting on traditional, complementary and integrative medicine at Chandigarh yesterday as part of its BRICS 2026 chairship. The meeting brought together senior government officials, technical experts and delegates from BRICS member countries to strengthen multilateral cooperation, promote the exchange of knowledge and best practices and advance collaboration in the field of traditional, complementary and integrative medicine. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on the digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी

पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: கா அருளா. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता।

0: लहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए

0: स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के

0: विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

நம்மடா

0: విన్న ఆ పాట యమలీల. ఈ చిత్రం నుండి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి, సాహిత్యం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర గళాల్లో సంగీతం ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి. ఇవండి మరి సత్యనారాయణ గారి జీవిత విశేషాలు. మీకు నచ్చాయి కదూ? రేపు ఉదయం 11:30 ఇది 100.1 ఎఫ్ఎం గోల్డ్లో మల్లెపూదండ కార్యక్రమంలో రేడియో చరిత్ర శ్రీమతి కె రమాదేవి గారి ప్రసంగం ప్రసారమవుతుంది. ఈనాటి మధురం మధురం ఈ సమయం కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है. संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए. श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है. उन्होंने कहा कि चर्चा यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए और जितनी लंबी चाहे चल सकती है.
2: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं. लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं. हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है. नई दिल्ली में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के प्रत्येक मुद्दे को सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों और युवाओं का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट

0: परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना अड्डे पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में शुक्रवार तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha reassembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Teneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by a voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules. Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said that the government is ready for the discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress party of creating obstacles in conducting the discussion in the House by imposing new conditions. Amid uproar, Deputy Chairman adjourned the House till tomorrow. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying that centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by the students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
2: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
3: BJP

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: Houses and Lightships website, that is at www.dgll.nic.in. You could also go on to www.ncs.gov.in. The Directorate of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration has invited applications from eligible officers of the central government, state governments, union territories, agricultural universities and recognized research institutes for one post of Joint Director, Fisheries. The post is Group A gazetted non-ministerial position in pay level 11 as per the 7th CPC. Interested and eligible candidates may download the detailed vacancy notice, eligibility conditions and application format from the official Andaman and Nicobar Administration website. Complete applications should reach within 60 days from the date of publication in the Employment News. For details, do refer to the website at www.andaman.gov.in. The National Institute of Design, NID Andhra Pradesh, an institute of national importance under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited online applications from eligible Indian nationals. The institute is recruiting for a wide range of teaching and non-teaching positions, including a principal designer, faculty, senior accounts officer, assistant, senior assistant, librarian, associate senior technical instructor, associate senior design instructor and technical assistant across disciplines such as industrial design, communication design, textile and apparel design and interdisciplinary design studies. The post carries pay levels from 5 to 13 as per the 7th CPC and will be filled through direct recruitment, deputation or short-term contract depending on the post. Interested candidates must apply online only through the institute's website. The online application window is open till 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.nid.ac.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के आधार पर इन पदों को भरा जाना है। आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष, चिकित्सा अधिकारी 40 वर्ष, निजी सचिव आयु सीमा 35 वर्ष, तकनीकी सहायक आयु सीमा 32 वर्ष, प्रयोगशाला सहायक 30 वर्ष और प्रयोगशाला परिचर 30 वर्ष। निर्धारित आवेदन प्रारूप अनिवार्य योग्यता अनुभव सामान्य नियम शर्तों और अन्य विवरण के लिए देख सकते हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2026 जबकि आवेदन की मूल प्रति जमा कराई जा सकती है 17 अगस्त 2026 तक। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन के द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट nidmp.ac.in। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रहेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है निदेशक वित्त एवं प्रशासन, निदेशक परियोजना, संयुक्त निदेशक परियोजना, उपनिदेशक तकनीकी तथा सहायक निदेशक वित्त एवं प्रशासन। विस्तृत पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रारूप के लिए देखिए वेबसाइट nridia.dord.gov.in।

0: समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्ची में इन पदों को भरा जाना है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2, सलाहकार, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1, कार्यकारी सहायक, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो तथा अनुभाग अधिकारी। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतन संबंधी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए वेबसाइट www.cmlre.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रमुख सलाहकार नीति नियोजन, वरिष्ठ सलाहकार नीति नियोजन और मुख्य धाराकरण, वरिष्ठ सलाहकार संग्रहालय एवं सांस्कृतिक विरासत स्थल एवं परिसर तथा सलाहकार आपदा प्रबंधन। आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब अभ्यर्थी NDMA के जॉब पोर्टल NDMA.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस फोन नंबर पर 9873997934। NDMA बगैर कोई कारण बताए ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के कुल 2 पद रिक्त हैं। 1 पद अनारक्षित है जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। इसी दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, इसलिए ये तारीख भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है। हालांकि ये दिन स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, लेकिन आज का ये दिन तिरंगे के इतिहास और उसके महत्व को याद करने का अवसर है। आज के डेटलाइन सेगमेंट में अपने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जानेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
1: नमस्कार रादाब, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ परिक्रमा। यस, द तिरंगा और आवर नेशनल फ्लैग इज नॉट जस्ट अ फ्लैग, इट इज आवर आइडेंटिटी, अ पीस ऑफ हिस्ट्री, and of course it reminds us of the immense sacrifices of all the people who made sacrifices in the freedom struggle. And yes, sir Firozi, hum log kyunki desh ka videsh sabki sair pe jaate hain, that's why the show is called Parikrama. Mostly we'll go to parts of our different country, to different parts of our country, and see which interesting stories our correspondents have from there. And baat kyunki tiranga ki hogi to tafseer se baat karenge in our segment Dateline India. Let's start with the headlines first. Stalemate continues in Parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malwan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security.
0: गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट।
1: क्वाड फॉरेन

0: Ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam.
1: और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.
0: And yes, let's begin the show with our segment, Dateline India. And of course, at the beginning of the show, we have already told our listeners that today is National Flag Day. This is this very day in 1947, just weeks before India finally gained independence, the Constituent Assembly of India officially adopted the Tiranga as the national flag of our country. And it's indeed a very important day in the history of our nation.
1: श्रोताओं, जुलाई 1947 के भारत के बारे में सोचिए. आज़ादी के लिए चल रहा लंबा संघर्ष अपने आखिरी पड़ाव पर था. कई पीढ़ियों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी. लाखों लोगों ने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां लोग सम्मान और आज़ादी के साथ जी सकें.

0: And Sir Firozi, as I had mentioned, that it's not just a flag, it reminds us of our identity, our history, and the sacrifices that people have made to achieve this day when we can boldly, bravely, fearlessly unfurl the Tiranga. Above all, it is also about the values that continue to unite over 1.4 billion Indians under one tricolor. And well, stay with us to explore as we explore the remarkable story behind one of the world's most respected national flags.
1: और सायरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होने वाला था, लेकिन एक आज़ाद देश के तौर पर भविष्य में कदम रखने से पहले उसे एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत थी जिसे हर भारतीय गर्व से अपना कह सके, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, धार्मिक पहचान कुछ भी हो, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो.
0: That's right. And well, every great symbol has a story. The story of our Tiranga brings us to Pingali Venkaiah, a remarkable freedom fighter, scholar, agriculturalist and designer. Born in present-day Andhra Pradesh, Pingali was deeply interested in the science of flags, known as vexillology. He studied flags from different nations and firmly believed that India too deserved a distinctive flag that reflected its identity and aspirations. For years, the work continued tirelessly on different designs and presented several ideas before arriving at the concept that eventually inspired our national flag. His contribution reminds us that history is shaped not only by famous political leaders, but also by visionary individuals whose dedication leaves a lasting legacy. Today, whenever we salute the Tiranga, we also honor the vision and perseverance of Pingali Venkaiah.
1: और सायरा, जब हम तिरंगे को गौर से देखते हैं तो पहली नज़र में बस एक बीच में गहरे नीले रंग के एक सर्कल चक्र के साथ तीन खूबसूरत रंगीन पट्टियों जैसा दिखता है, और हालांकि इनमें से हर पट्टी का एक अलग मतलब है, तो उसी मतलब को आज हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर समझ लेते हैं एक बार फिर. सबसे ऊपर वाली केसरिया पट्टी से शुरू करते हैं. केसरिया रंग साहस, त्याग और निस्वार्थ का प्रतीक है. ये हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इसके बाद आती है बीच में सफ़ेद पट्टी जो शांति और सत्य का प्रतीक है. भारत जैसे अद्भुत देश में शांति केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी है. सफ़ेद रंग हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद सद्भाव, ईमानदारी और आपसी सम्मान एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है. और सबसे आखिर में लगी हरी पट्टी विकास, समृद्धि और उर्वरता को दिखाती है.
0: That's right. And of course, all these three colors, you know, they represent so many, you know, over a billion Indians who are probably, you know, they have different languages, they have different colors, even different facial features, but they are united by one patriotic feeling that we all are Indians. Now, let us look at the most fascinating feature of the Tiranga,

0: sisters continues to grow stronger.
1: और सायरा, हम सभी ने खुले आसमान के नीचे कई बार तिरंगे को लहराते हुए देखा है, और क्या आपने गौर किया है कि राष्ट्रगान शुरू होते ही और झंडा फहराते ही लोग एकदम सीधे क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि ये यादों को समेटे हुए है, ये भावनाओं को समेटे हुए है और इतिहास को समेटे हुए है। तिरंगे ने भारत के कुछ सबसे गौरवशाली क्षणों को देखा है। इसे हिमालय की चोटियों पर लहराया गया, इसे भारतीय वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का साथी माना गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पदक जीतने वाले एथलीट्स ने अपने हाथ में उठाया और ओढ़ा। ये दुनिया भर में सेवारत शांति सैनिकों के साथ खड़ा रहा है। इसने सबसे कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को प्रेरित किया है।
0: That's right. It's one of the greatest strengths of India. Of course, we all know it. The greatest strength is its diversity, and the national flag, the Tiranga, aptly represents that. We speak hundreds of languages, celebrate different festivals, enjoy different cuisines, follow different traditions and customs. Yet, when the Tiranga is unfurled, these differences blur and fade into the background. For those few moments, every Indian stands together. The flag belongs equally to every citizen. It does not ask where we come from. It reminds us where we belong. That is the true strength of the Tiranga.
1: बिल्कुल सायरा, और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान केवल खास मौकों तक सीमित नहीं है, ये उस सम्मान और गरिमा में झलकता है जिसके साथ हम इसे फहराते हैं और अपने पास संभाल कर रखते हैं। जब हम तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं तो हमें न केवल एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की भी याद आती है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब है कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखना। तिरंगे से जुड़े मूल्य तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे रोजमर्रा के कामों में भी दिखाई दें।
0: That's right. And before we conclude this segment, in fact, you know, this topic for today's segment, let's take a moment to reflect. When you see the saffron, think of courage. When you see the white, think of peace and truth. When you see the green, think of hope and prosperity. And whenever your eyes rest upon the Ashok Chakra, remember that life, society, and the nation must always keep moving forward. The Tiranga is not merely a reminder of our past, it is a guide for our future.
1: और श्रोताओं, हमें ये भी याद रखना है कि आज जब हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं तो 22 जुलाई 1947 को भारत ने सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं अपनाया था, उसने एक ऐसे प्रतीक को अपनाया जो कई पीढ़ियों की उम्मीदों, बलिदानों, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगे की हर लहर एक कहानी कहती है। ये कहानी है हिम्मत और मजबूती की, ये कहानी है एकता की, ये कहानी है आज़ादी की, और यही कहानी हम सबको एक साथ आगे बढ़ा रही है।
0: So today, whenever you are at home or at work or you know, you're commuting, just take a moment to look at our national flag with renewed pride and gratitude, because behind every thread lies the courage of those who fought for freedom, the wisdom of those who built our nation, and the promise of those who will shape its future. And until next time, stay informed, stay inspired, and continue to uphold the values that make our nation strong. Jai Hind. And moving on to our next topic, well, today is also World Brain Day, Sir Firozi. And agar brain ki jaisi baat karte hain, you know, I am totally fascinated by this organ of our, you know, there are so many contours within the brain, jaise lagta hai un parton mein abhi bhi kitne rahasya chupe hain jo scientists nahi pata kar paaye hain. And every day is an opportunity to learn something new, but today of course is extra special because it reminds us to appreciate one of the most extraordinary organs in the human body, our brain. That's right, today, that is 22nd July, is observed worldwide as World Brain Day. आप ये सोचिए सर फिरोजी कि इंसान का एक ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फॉर एग्जाम्पल जैसे यादें हैं वो अपने ब्रेन समेटे हुए, इफ यू टेक दैट अवे फ्रॉम अ पर्सन लाइफ
1: कुछ नहीं बचेगा इंसान,
0: नथिंग। एंड यू नो देर आर सम डिजीजेस इन विच पीपल यू नो अल्जाइमर्स जो बहुत ज्यादा हो जाता है,
1: भूल जाते हैं चीजों को।
0: एग्जैक्टली, सो यू कांट इवन इमेजिन दैट ये कितनी बड़ी ऊपर वाले की एक कह सकते हैं नेमत है, दैट वी शुड बी थैंकफुल एवरी सिंगल breath of our life if our brain is working properly. So yes, on this day, that is 22nd July, a global healthcare awareness campaign was established by the World Federation of Neurology. This important day encourages people everywhere to understand

0: and the importance of brain health and to work together to prevent neurological disorders. This year's inspiring theme is Brain Health, Access for All.
1: और सायरा, हमारे जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वो एक टाइम पर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हर पल कुछ ना कुछ करता रहता है. इनफैक्ट जब हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं जब वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तब भी उनका जो दिमाग है वो मेरी और आपकी आवाज़ें सुनने, हर शब्द को समझने, जानकारी याद रखने, दिल की धड़कन को रेगुलेट करने, सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने और यहाँ तक कि ये तय करने में भी मदद कर रहा है कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे. तो क्या आपके दिमाग में सोचा है सायरा, आप क्या करने वाली हैं प्रोग्राम के बाद?
0: Well, by the time we end this show, it's almost sundown and people probably head to their evening tea, isn't it?
1: बिल्कुल. और अब हमने बात करी थी कि कुछ ट्रिविया भी जान लें अपने दिमाग से जुड़ा हुआ. तो इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब नर्व सेल्स होते हैं जो खरबों कनेक्शन के जरिए आपस में बातचीत करते हैं. और जैसा कि हमने कहा कि हमारा दिमाग असल में कभी भी काम करना बंद नहीं करता, यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी ये यादों को समेटने, व्यवस्थित करने, सेल्स की मरम्मत करने और अपने शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करने में व्यस्त रहता है. तो ये कमाल की बात है सायरा.
0: Absolutely, and in fact, you can imagine that the dreams that we have, they're all because of our brain. So sometimes that still are even science has not explored the world of dreams and what happens, what invokes dreams. Is it indicative of another life that we had or is it just our subconscious? So brain is an enigma and it truly fascinates me nonetheless. And well, despite its importance, sadly brain health is often overlooked, and especially these days when there is so much of stress, lifestyle has become so haphazard. Log apne dimag ki health ko bahut zyada ignore karte hain, which is absolutely not right, not correct. And in fact, I think what most of the scriptures say, most of positive people who follow one mantra in life is that लिव इन द मोमेंट.
1: जी,
0: जो भी है बस यही एक पल है.
1: जितना आप भविष्य के बारे में सोचते हैं मुझे लगता है कि इकट्ठा होता जाता है स्ट्रेस.
0: यस, एब्सोल्युटली. सो जस्ट गिव योर बेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड देन लीव द रेस्ट. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स, वी ऑल गो थ्रू सम इमोशनल अपहीवल्स इन आवर लाइफ, बट easier said than done. But since you can, brain is the most powerful thing in this world, and I feel that if we try to train our brain, to koi bhi emotion, for example jaise unfortunately kisi ki death ho gayi aapke usme, to yaad to zahir si aati hai, but science says that a human emotion that is very strong, it's only for 90 seconds. So just keep, tell yourself, acknowledge it that okay, I am sad today, but be sad for not more than two minutes.
1: सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी है, उसके बाद लेट गो वाला एटीट्यूड अपनाकर आपको एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ देना है और आज के मोमेंट में जीना है.
0: या और कई बार ये भी बहुत से लोग काउंटर करते हैं कि उसको छोड़ना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू लॉस्ट अ डियर वन, हम लोग कभी ता कयामत तक के हम लोग उसको जो है नहीं छोड़ सकते उन चीजों को, पर आप छोड़िए ना, बट इतना भी ना पकड़िए कि वो
1: ओवर पावर ना करें.
0: या दैट शुड नॉट बी द केस. सो एज साइंस सेज that any emotion that you experience, it lasts for 90 seconds. So aap 30 seconds chaliye aur le liya, aap 120 seconds, 2 minute full aap jitna rona hai ro lijiye, lekin us cheez ko fir uske zyada prolong mat kariye, because obviously there are so many blessings also that we have around. And jo beet gayi so baat gayi, jeevan mein ek tara tha, mana wo behad pyara tha. To bahut si aisi cheez hote hain that sometimes poets and all bahut gehri gehri baatein keh jate hain, and we probably don't think on them, but we should.
1: और अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन डे की, तो इसके जो 5 मुख्य पिलर हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं सायरा. इसका जो सबसे पहला पिलर है वो है इक्विटी, यानी समानता. तो दिमाग की सेहत आपकी इनकम, आपके सोशल बैकग्राउंड या आप कहाँ रहते हैं इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. चाहे कोई बड़े शहर में रहता हो या दूर दराज के गाँव में, हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएँ पाने का समान अधिकार है. और स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है और आपकी दिमाग की सेहत भी इससे अलग नहीं है.
0: And of course, the second pillar is early intervention.
1: जी.
0: Third is prevention. And of course, we all know that healthy habits today will build a healthier brain tomorrow. And of course, the final pillar, of course, we can say is global action. And awareness is very important. And not just only awareness, because we all know ke sirf awareness nahin, there are so many people who are making policies. The governments are there. The professionals are there. Research

0: research is there. So every policy, every awareness campaign, and every healthcare initiative can help create a healthier future.
1: सायरा, अब समय आ गया है कि अपने श्रोताओं को लेकर चलें देश भर की परिक्रमा पर. तो सबसे पहले कहाँ चल रही हैं?
0: वेल, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम अप नॉर्थ, इनफैक्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं, फ्रॉम सिक्किम. विद सिक्किम स्पिरिट इन देयर हार्ट्स एंड डिटर्मिनेशन इन एवरी स्ट्राइड, द मैजिकल फोर एंड्योरेंस टीम एम्बार्क्स ऑन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिमालयन जर्नी. As Sikkim celebrates 50 years of statehood, the team's challenging Ladakh expedition inspires youth to embrace courage, perseverance, and resilience while strengthening the message of environmental responsibility and national unity. Marking 50 years of Sikkim statehood, Magical Four embarks on a challenging high-altitude run across Ladakh's highest motorable mountain passes.
2: The Magical Four Endurance Team, Anup J. Panya, Basant Pradhan, Bhupendra Hangsubba and Lob Burman,
3: supported by Arjun Sakya,
2: has begun the third phase of its Sikkim Statehood Golden Jubilee commemoration run. The expedition involved running over 600 km from Kardung La to Umling La, crossing 8 high-altitude motorable passes at elevation exceeding 5,000 meters. The run was ceremonially flagged off from Kardung La by Dr. Kejang Dorji, former chairman Block Development Council, Leh. The expedition celebrates 50 years of Sikkim statehood while promoting endurance, environmental awareness, youth inspiration, national integration and civil-military cooperation in the Himalayan border regions.
4: Magical Four हमारे सिक्किम को राज्य बनने के 50 साल का ये सेलिब्रेशन ये लोग मनाने जा रहे हैं और आज इनका यहाँ से लेके उमलिंगला तक इनका टारगेट रहेगा. अगस्त के 4 तारीख तक ये लोग उमलिंगला पहुंच जाएंगे. इससे पहले ये लोग श्रीनगर से आए हुए और इनका टारगेट 10 हाई पासेस को क्रॉस करना है. सिक्किम को राज्य बनने के बाद 50 साल हो गए हैं, इसका सेलिब्रेशन ये लोग मना रहे हैं. मेरी तरफ से और सभी लद्दाख के वासियों की तरफ से हम इन चारों को बेस्ट ऑफ लक और गुड लक कहना चाहेंगे.
2: The Magical Four expedition continues to inspire with its message of courage, discipline and perseverance, carrying the spirit of Sikkim across the Himalayas while celebrating 50 years of statehood. With Mainak Chatterjee, Dilham Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
1: और सायरा, अब अपने परिक्रमा कार्यक्रम को थोड़ा कल्चरल टच भी देते हुए चलते हैं. चल रही हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहां सावन की शुरुआत के साथ प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. हमारी संवाददाता इस पर खास रिपोर्ट पेश कर रही हैं.
5: उत्तराखंड में सावन का महीना केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म के अद्भुत मिलन का भी प्रतीक है. इसी भाव को लोक पर्व हरेला और जागेश्वर धाम के श्रावणी मेले में एक बार फिर जीवंत कर दिया है. हरेला यानी हरियाली का पर्व. सदियों से उत्तराखंड में यह त्यौहार धरती, जल, जंगल और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम रहा है. इस बार भी पूरे प्रदेश में लाखों पौधे लगाने का अभियान चलाया गया. राजभवन से लेकर गांव तक, विद्यालयों से लेकर वन क्षेत्रों तक, हर हाथ में एक पौधा और हर मन में प्रकृति संरक्षण का संकल्प दिखाई दिया. राज्य सरकार ने भी इस अवसर पर देश भर में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया. खास बात ये रही कि हरेला के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेश भर में 12 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया. उधर कुमाऊं में स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ. भगवान शिव को समर्पित 100 से अधिक प्राचीन मंदिरों का ये समूह सावन में विशेष आध्यात्मिक आभा से भर उठता है. दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जटा गंगा के तट पर स्थित इस पावन धाम दर्शन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं. श्रावणी मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जागेश्वर की प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखते हुए यहां श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. हरेला और श्रावणी मेला मिलाकर उत्तराखंड की उस पहचान को सामने लाता है, जहां प्रकृति की हरियाली और शिव की आराधना एक दूसरे की पूरक है. यही संदेश इस पर्व को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सहभागिता का जीवंत संकल्प बनाता है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
0: And Defence Minister Rajnath Singh today virtually flagged off the first ever tri-services all-women expedition, Samudra Pradakshina, on board IASV Triveni at Mumbai's historic Gateway of India. Let's hear more from our correspondent.
6: So you're back on land after 10 months. How are you feeling?
7: It's a very surreal experience and I'm yet to come back on the land, because spending 10 months on sea is, you know, the sea gets to you and you are still finding your land legs. That's something which is happening with me right now.
6: So 10 months in open sea. How was the experience? What were the challenges?
7: It was a very different experience because

0: whatever we have experienced in our training, it was certainly not there. It is something which you have to go and experience to understand what exactly it is. Because being in tropical climate, going into temperate and then much more colder climates, everything changes on the sea. The temperature changes, your water changes, you yourself are changing, your environment is changing. So it's a process in all together. So
1: that was the expedition leader, Lieutenant Colonel Anuja Varudkar, in conversation with our correspondent Ankita Apte.
2: श्रोताओं, अब चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर. बात कर रहे हैं चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे.
1: And to now business news. Well, benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today. Sensex shed 715 points to close at 76,755. Nifty settled at 23,996. For more updates, listen to our show Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और सायरा, अब याद कर लेते हैं उन खास हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई. सबसे पहले याद कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक भारत के मुकेश की बात कर रहे हैं. मुकेश चंद्र माथुर इनका पूरा नाम था. इनके अंदर वो काबिलियत थी जो इन्हें एक अच्छा गायक बनाने के लिए प्रेरित करती, और हुआ भी यही. इन्होंने निर्दोष फिल्म में अदाकारी करने के साथ साथ गाने भी खुद गाए. इसके अतिरिक्त इन्होंने माशूका, आह अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया. वहीं गायक के रूप में 1945 में इन्होंने फिल्म पहली नजर में अपनी करियर की शुरुआत की. आइए सुनते हैं इनकी फिल्म के कुछ चुनिंदा गाने.

And Mukesh, of course, became the voice behind actors, especially Raj Kapoor, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त एंड ऑफ कोर्स दिलीप कुमार. और जब बात की जाए सो मेनी ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट हैव बीन पिक्चराइज्ड ऑन राज कपूर, दे वर संग बाय मुकेश. लेकिन ये जो एक्सपेशली गाना है, आई थिंक इट बिफिट्स नॉट जस्ट द एक्टर बट ऑफ कोर्स द वॉइस बिहाइंड द एक्टर. लेट्स लिसन टू इट.

आज बाबला मेहता की भी पुण्यतिथि है। ये पार्श्व गायक, संगीतकार और ऑडियो इंजीनियर थे। इन्होंने अपने करियर के दौरान 250 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और 10 एकल एल्बम जारी किए। इनका गीत तेरे मेरे होठों पे इनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

0: अच्छा
1: आज संदीप पांडे की का जन्मदिन है। ये देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करने का निर्णय लिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की तथा उसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यकों की पक्षधरता के लिए काम करने लगे। इन्होंने अपनी संख्या तथा अपने दल के साथ पूरे जोर शोर से अपना कार्यक्रम लागू करना शुरू किया और उसके लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। देश की दशा में सुधार लाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इन्हें वर्ष 2002 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। आज ही हिम्मत शाह का भी जन्मदिन है। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनके काम की विशिष्टता इनके ब्यौरे में रहा करती है। बहुत मामूली सी समझने जाने वाली बेजान मिट्टी इनके हाथ के स्पर्श से जीवंत और जागरूक होती है। और सायरा, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार, ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார்.
3: நேரம் 5 மணி. ஆகாஷ்வாணி 100.1 எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் அரங்கிசை. சுபஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் அவர்களின் பாட்டை கேட்கலாம். பரூர் எம் கே அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், வி கல்யாணராமன் அவர்கள் மிருதங்கம், ஹெச் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கட்டம். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ராமநாதபுரம் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் இயற்றிய வனஜாக்ஷி கல்யாணி ராகவர்ணம் ஆதிதாளம்.

0: ஜாகிருதி சர்மா. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई. तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है. नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है.
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है.
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है. दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है. दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है. इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी. राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. सिक्किम के नामची जिले के

0: मरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசையில் நிகழ்ச்சி நிரலை கேட்கும் முன்

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बात करेंगे उभरती संक्रामक बीमारियों और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए देश की तैयारियों की। हाल ही में सरकार ने बताया है कि संक्रमण के समय प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है, प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाया गया है और अस्पतालों की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन बदलती जलवायु, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आवाजाही के बीच नई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि उभरती संक्रामक बीमारियां क्या है, डेंगू हर साल चुनौती क्यों बन जाता है और इस लड़ाई में आम नागरिकों की क्या भूमिका है। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने ऐसी कई बीमारियों का सामना किया है जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्षमता को चुनौती दी। कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा, लेकिन इसके अलावा निपाह वायरस, जिंका, मंकी पॉक्स और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों ने भी ये संकेत दिया है कि भविष्य में नए संक्रमण कभी भी सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञ इन बीमारियों को उभरती संक्रामक बीमारियां यानी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो या तो पहली बार सामने आती हैं या फिर पहले सीमित क्षेत्र तक रहने के बाद तेजी से फैलने लगती है। कुछ बीमारियां वर्षों तक नियंत्रण में रहने के बाद दोबारा गंभीर रूप में लौट आती हैं। इन्हें री इमर्जिंग डिजीजेस कहा जाता है। आइए आप समझते हैं कि आखिर क्यों ये संक्रामक बीमारियां स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी चुनौतियां हैं और भारत की सरकार इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि आज नई संक्रामक बीमारियों का खतरा पहले की तुलना में अधिक है। इसके पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे मच्छरों जैसे वाहकों का फैलाव नए क्षेत्रों में पहुंच रहा है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, अनियोजित बस्तियां, बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप और इंसानों तथा वन्य जीवों के बीच बढ़ता संपर्क भी नए संक्रमणों के उभरने की संभावना बढ़ा रहा है। भारत ने भी कोविड-19 महामारी से महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। महामारी के दौरान यह महसूस किया गया कि यदि संक्रमण की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो उसके व्यापक प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी सोच के साथ देश में रोग निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, जाँच सुविधा का विस्तार करने और राज्यों के बीच सूचना के आदान प्रदान को तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने देश भर में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDASP को मजबूत किया है। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों और जिलों से बीमारियों से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से एकत्र की जाती है, ताकि किसी भी असामान्य स्थिति का समय रहते ही पता लगाया जा सके। इस व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों और स्वास्थ्य संस्थानों से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होती है। देश में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब्स का भी लगातार विस्तार किया गया। इन प्रयोगशालाओं की मदद से नए वायरसों की पहचान, उनकी जांच और वैज्ञानिक विश्लेषण पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से संभव हो पा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना है। इसका अर्थ है कि इंसानों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानकर काम

0: किया जाए, क्योंकि अधिकांश नई संक्रामक बीमारियां पशुओं से इंसानों में फैलने वाले संक्रमणों से जुड़ी होती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को महामारी की रोकथाम का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, क्रिस्टल केयर सुविधाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निवेश बढ़ाया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी महामारी जैसी स्थिति में केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल यानी नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। किसी भी बीमारी के असामान्य प्रकोप की स्थिति में यह दल तेजी से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर जांच, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। समय समय पर राज्यों के साथ मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आपात स्थिति में सभी एजेंसियां बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर सकें।
1: श्रोताओं, भारत के लिए उभरती संक्रामक बीमारियां तो चुनौती है ही, साथ ही साथ मॉनसून आते ही भारत में कई मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इनमें डेंगू सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच देश के विभिन्न राज्यों में इसके मामलों में वृद्धि देखी जाती है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब छोटे शहरों और कस्बों में भी डेंगू का प्रभाव बढ़ रहा है। श्रोताओं, आखिर डेंगू क्यों लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चिंता बना हुआ है और इससे बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यही जानेंगे अगले भाग में।
0: डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलती है। खास बात यह है कि मच्छर गंदे नालों में नहीं बल्कि घरों और उसके आसपास जमा साफ पानी में पनपते हैं। कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकियां, नारियल के खोल, प्लास्टिक के डिब्बे या छत पर रखे ऐसे बर्तन जिनमें पानी जमा हो जाए, ये सभी इनके प्रजनन स्थल बन सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने से इन मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि मानसून के दौरान डेंगू के मामले भी बढ़ने लगते हैं। डेंगू के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे ही होते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल चकते इसके सामान्य लक्षण हैं। अधिकांश मरीज उचित इलाज और आराम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जिसमें प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ शरीर से रक्त स्राव, रक्तचाप में गिरावट और कई अंगों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए समय पर जांच और चिकित्सकीय सलाह बेहद जरूरी होती है। डेंगू की चुनौती केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है, कामकाजी लोगों की उत्पादकता प्रभावित होती है और परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि डेंगू को दुनिया में तेजी से फैलने वाली वेक्टर जनित बीमारियों में से एक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू को केवल अस्पतालों में इलाज से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसका सबसे प्रभावी उपाय है मच्छरों को पनपने ही ना देना। यदि घर और आसपास कहीं भी 7 दिन से अधिक पानी जमा नहीं होने दिया जाए तो एडीज मच्छरों के प्रजनन की श्रृंखला को काफी हद तक तोड़ा जा सकता है। इसीलिए डेंगू की रोकथाम में प्रत्येक नागरिक की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सरकार की। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने इस वर्ष मानसून शुरू होने से पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उच्च स्तरीय बैठक में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों की स्थिति का आकलन किया तथा राज्यों को समय रहते निगरानी, जाँच और उपचार व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। राज्यों से कहा गया कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड, दवाइयां, जांच सुविधाएं, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहें, साथ ही बुखार के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान, फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण जैसे उपायों को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बीमारी की निगरानी, जांच, अनुसंधान और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि उसके फैलने से पहले उसे पहचानना और नियंत्रित करना है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने अब जीनोमिक निगरानी को भी अपनी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। वायरस समय के साथ अपना स्वरूप बदल सकते हैं, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि वायरस में कोई नया बदलाव तो नहीं आया है जिससे उसकी संक्रमण क्षमता या गंभीरता बढ़ सकती है।

कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित ये क्षमता अब अन्य संक्रामक रोगों की निगरानी में भी उपयोगी साबित हो रही है। श्रोताओं, यदि हम समय पर लक्षणों की पहचान करें, डॉक्टरों की सलाह लेने में देरी ना करें और अपने घर तथा आसपास पानी जमा ना होने दें, तो डेंगू जैसे बीमारियों के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। यही सतर्कता भविष्य में उभरने वाली नई संक्रामक बीमारियों से देश की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।

0: स्तरीय चर्चा इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य एकादश दिनांके भविता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने भागम अगृह्णात्। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन्। उपवेशनावधौ तैः हिन्द प्रशांत क्षेत्रमधिकृत्य आसियान संघस्य दृष्टिकोणस्य समर्थनार्थं क्षेत्रीय समाह्वानानां अवसराणां चापि तैः समीक्षा कृता। चर्चायाः प्रमुख विषयेषु तावत् सामुद्रिक सुरक्षा, अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धिः, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक्यः, आपत् प्रतिक्रियाश्च समाविष्टाः आसन्। उपवेशनमतिरिच्य डॉक्टर जयशंकरः अमेरिका देशस्य विदेश मंत्रिणा मार्को रूबियो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां व्यदधात्। मंत्री प्रावोचत् यत् एषा वार्ता भारत अमेरिका देशयोः व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागितायाः प्राथमिक विषयेषु व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, खनिज कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु केन्द्रिता आसीत्। असमराज्ये जलप्लावनस्थितिः साम्प्रतमपि अत्यन्तं संकटापन्ना वर्तते, यत्र राज्यस्य षोडश मण्डलानि जलाप्लावेन प्रभावितानि सन्ति। कृत्स्नेहि राज्ये जलौघेन 21 जनाः पञ्चत्वे विलीनाः, येन अद्यावधि मृतकानामाहत्य संख्या 31 सम्प्राप्ता। आधिकारिक प्रतिवेदनानुगुणं 270+ ग्रामाः साम्प्रतमपि आप्लाविताः वर्तन्ते, येन अशेषस्य राज्यस्य 5,00,000+ जनाः प्रभाविताः अभवन्। राज्यसर्वकारेण 170 आपत् उद्धार शिबिराणि तथा 200+ आपत् वितरण केन्द्राणि समुद्घाटितानि, यैः 12,000+ जनेभ्यः आश्रयः, 1,00,000+ जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोधप्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीयसर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते। सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय, समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचितराजनैतिकस्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिककन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
2: यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है।
0: संसदि विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधामधिकृत्य रक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्तविषये सारगर्भयुतां विचारचर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते, किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद्भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति। अद्य लोकसभायां रेलयमन्

मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षणकार्यैः च रेल सुरक्षा अतीव सुदृढा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्रीवैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षा कार्याणां व्ययः 13,000-2,000 वर्षे 13,000 कोटिरूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 1,20,000 कोटिरूप्यतोप्यधिकं संजातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14.9, 1:21.10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकलवर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्र। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमित।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा।
0: थैंक यू अमित एंड सुषमा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी। Sensex 700 अंक से अधिक लुढ़का। Nifty भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज। प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी।

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसए मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई.
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1% and the Small-Cap 100 Index dipped over 1.5%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: Broad-based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%.

0: 1.8% and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced and 180 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जिस जब बाजार कहीं ना कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया.
2: बिल्कुल,
1: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा, हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया.
2: देखिए, ये जो आजकल के दो तीन दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं. लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है. हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए. तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे. और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे. लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है. तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है. तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं. दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे. खैर अभी नहीं, उन्होंने दो साल की ये पीरियड दिया है कि दो साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे. तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है.
1: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य अमरीका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमरीका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
2: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहाँ भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का. और जो मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए. ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का

0: सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है, और जेनेरिक दवाइयाँ, ये जो हमारी भारतीय दवाइयाँ जो हैं वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती है, मतलब बहुत खरीदी जाती है, और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो इनके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वैसे भी जो दवाइयाँ अमेरिका में उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन्स। कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, यहाँ आके दवाइयाँ खरीदते हैं और वहाँ वापस चले जाते हैं। तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं, और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।
1: राइट, so a small question again starting with pharma and the announcement over now, it's 2 years in the future.
0: Yes.
1: As an offing. We also know that the past history of comments that are made of taxation, of taxes, levying taxes, of ceasefire, of MOUs,

0: एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। भारतीय कंपनियों में चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है। क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
1: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है। तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए। और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं। जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
0: बहुत तेजी से बढ़े,
1: बहुत तेजी से प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे। और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम
0: इसलिए आ पा रहा है
1: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में।
0: FMCG लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया FMCG।
1: बिल्कुल,
0: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है, इस वजह से, या कोई और बात?
1: नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये FMCG के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है और फिर बड़े पैकेट्स कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है।
2: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
1: yes,
2: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much, and,
1: yes,
2: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
1: Yes, it, yeah, it. Right. I mean that needs to be analyzed, but it could be.
2: Right, right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182% year-on-year to 20,211 crore rupees. On a quarter-on-quarter basis, revenue increased around 17%. The company's consolidated net profit grew by 268% to 92 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, net profit declined over 47%.
0: नफर लाल ने एशियाई शेयर बाजार पर, एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का रुझान रहा। ताइवान का ताइएक्स 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% और जापान का निकेई 0.2% के नुकसान से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में तेजी का दौर नजर आया। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर बाजार 0.3% से 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
2: A look at the US markets. Major US indices ended higher yesterday, snapping a three-day losing streak. The rise was supported by a rebound in recently battered semiconductor stocks. The Nasdaq Composite Index surged 1.3%, S&P 500 added 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average jumped over 0.7%. Sushma, when we see markets across the world, we see the US market, we see the Indian markets, and we are somewhere saying that there are geopolitical reasons, which unifies sentiment possibly, but markets are all responding very differently. Your comment?
1: Yes, yes, correct.
0: I mean, एक चीज मैं इसमें और भी जोड़ना पड़ूंगा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं जो युद्ध छेड़कर अपने बाजारों को मजबूत कर रहे हैं।

0: is how do we reduce energy, I mean, use of regular fuels, and how do we, what energy form do we take on? I think a little extra thought on that, because to say it's not good to be held ransom.
1: Yes. So I think right now the issue of, first of all, sorry, you talked about high consumption. Actually, on a per capita basis, our consumption of energy is not so high.
0: Right.
1: So, in fact, we need to improve our consumption, our per capita consumption of energy. But you are very right that we need to change the sources of this energy. Now, one of the things that ways in which the government has is trying to do that, and which has created a great deal of controversy, is by introducing ethanol and blending it into our petrol, 20% blending, which is the E20 controversy that has been going on. And despite the fact, and this is by doing this, the government has brought about a huge saving in the import bill. Now, the controversy over this is despite the fact that even automobile manufacturers, mind you, they are saying that there is no damage to the car as a result of using ethanol, and they are designing their cars to use more ethanol. Automobile experts have also said that yes, there will be a slight decline in fuel efficiency. And that is not a great deal, but there will be some slight decline, but there will be no damage to the car. Now, there is a great deal of talk about damage to the engine, but you know, according to automobile experts, according to the automobile industry, this is not so. And as has been pointed out by the petroleum minister himself, that this ethanol blends are being used by Formula One cars in their racing cars, because they say there's a less of what they call a knock-on effect. Now, I'm not a technical person, but this is what they say. So it's preferred there. So therefore, the government is trying. This is one of the ways.
0: Right.
1: And you know, we have to see what
0: oil was the flavor of the last question. Look at the global crude oil prices. They climbed nearly 4% today. The surge was led by growing concerns about supply disruptions triggered by escalating hostilities between the U.S. and Iran. Brent crude was trading almost 3.8% up at $94.44 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $87.28 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.2% up at 1,45,350 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,25,420 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1.2% की बढ़त से 1,44,618 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 0.6% की मजबूती से 2,25,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. सुषमा, संक्षेप में, जो अभी तेल की कीमतों का जो दबाव है
1: जी,
2: वो किस तरह से आपको नजर आता है, और क्या सोना चांदी की जो भाव हैं वो भी कहीं इससे कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, या फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉलर और रुपए का जो संबंध है, क्योंकि आज भी रुपए में हल्की सी कमजोरी आई है, वो इसको दिक्कत करेगी.
1: ये आपका सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षेप में नहीं हो सकता. हाल मैं सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे. उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है, और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में, तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे.
2: सुषमा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
1: थैंक यू.
2: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा. वंस अगेन, अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नमस्कार.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं युनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के

युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं।

इन नियमों के भाग तीन में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना

हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: पैर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार

0: लगातार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही तीन बार और राज्यसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड

0: और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को

0: शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक

0: आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांवों पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है, Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ है नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2,00,000 से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30,00,000 करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट

0: प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाएं, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाएं। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल की जब बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है, और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है
1: जी।
0: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके के तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं, और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं
1: जी।
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हमारी जो GDP का करीब 7% 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं, उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं

0: आगे बढ़ने के।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की

0: कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं, और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
0: हरवीर जी, 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके

0: अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी, या जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाए, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मान कर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो आधुनिक पढ़ाई लिखाई

0: वाला होता है। वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसते हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं बनता, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको एडाप्ट कर लिया। तो ये एडाप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचने पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसने आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें। उसको जब आप इस PMFEMA से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सिर्फ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम।

0: तो ये छोटा सा काम था, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है, तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है।

0: नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। यह नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स वर्ग में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को और लक्ष्य सेन ने योशी तनाका को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Vikasit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both Houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues including the NET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged

0: that some individuals are attempting to use the students and youth as a political tool to serve their own political interests.
1: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
0: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. The matter will be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said train accidents have declined sharply in the country due to improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the number of consequential train accidents has reduced from 135 in 2014-15 to just 2 accidents in this financial year so far. He said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 120,000 crore rupees in 2026-27. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered the singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda 21-14-9, 21-21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And with that, we end this news bulletin.
2: Namaskar, Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Ratna Pandey. Mukhya Samachar. क्वाड के विदेश मंत्रियों ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित बैठक में स्वतंत्र खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई अमरीका ने यमन के हूती समूह द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ की गई नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को दोषी ठहराया रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कल फिलीपींस में आसियान सम्मेलन के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया एक संयुक्त वक्तव्य में भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है ऊर्जा भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस
2: बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए

0: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोनोवाल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने बंदरगाह विकास, सीधे जहाजरानी मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण सहित समुद्री क्षेत्र में साझा शक्तियों का लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की। अमरीका ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद अमरीका ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को खतरे में डालने की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोही समूहों की नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उम्मीद व्यक्त की कि स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलीपींस में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि लाल सागर से होकर जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी चीज उसी कारण से समस्याग्रस्त होगी जिस कारण से होर्मुज जलडमरू मध्य समस्याग्रस्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक बंदी की घोषणा करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का प्रवाह खतरे में पड़ गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरो फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय सम्मेलन में कल अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट करेंगे। श्री लावरोव ने बताया कि उन्होंने कल मनीला में श्री रूबियो से संक्षिप्त मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रूस अब भी मानता है कि अमरीका पिछले वर्ष अगस्त में एंकोरेज में हुए रूसी अमरीकी शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए प्रस्तावों से पीछे नहीं हटा है। इस बीच अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने बताया कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नवीनतम प्रकोप में 2,473 मामले दर्ज किए गए हैं और 999 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय 737 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 15 मई को घोषित ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है। इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बुगियो वायरस का कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। घाना में कल अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के महानिदेशक जीन कासेवा ने प्रकोप को धीमा करने के लिए गहन प्रयासों का आह्वान किया। पश्चिमी नेपाल में आज सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान

0: खान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र सुदूर पश्चिम प्रांत के बाजंग जिले के कोटदेवाल के आसपास था, जो काठमांडू से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप के झटके पड़ोसी जिलों बाजुरा और दारचूला में भी महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुडा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी, जबकि लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराया। भारत के युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्क्वाश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को 11-3, 11-1, 11-3 से हराया। अब उनका सामना मलेशिया की 13-16 सीड डोएसिए सैनली से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में सीड आर्यवीर दीवान ने भी शानदार खेल दिखाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित बैठक में स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका ने यमन के हूती समूह द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ की गई नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को दोषी ठहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कल फिलीपींस में आसियान सम्मेलन के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Hold meeting at Manila in Philippines. US blames Iran for naval blockade against Saudi Arabia in Red Sea by Yemen's Houthi group. Russian foreign minister Sergei Lavrov to meet with US Secretary of State Marco Rubio tomorrow on sidelines of ASEAN in Philippines. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar today participated in Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and their unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas included maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and emergency response. On the sidelines of the meeting, Dr. S. Jayshankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio. The minister said that the meeting focused on areas which are priority for the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership, including trade, tariffs, energy, defense, security, critical minerals and artificial intelligence. Dr. Jayshankar also said that they exchanged quick perspectives on regional, global and multilateral issues of mutual interest. External Affairs Minister also met his Australian counterpart, Penny Wong. Dr. Jayshankar said that he followed up on the outcomes of Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Australia.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक

0: प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
2: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
1: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमित.
1: सबसे पहले एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरव.
0: Thank you, Amit and Sushma. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices continue downward trend. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी. Sensex 700 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज. प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी.

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई.
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil.

0: oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1% and the Small-Cap 100 Index dipped over 1.5%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: Broad-based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जिस जब बाजार कहीं ना कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया.
2: बिल्कुल,
1: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा? हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही, और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया.
2: देखिए, ये जो आजकल के 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं. लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है. हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए. तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे. और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज़ हो गए थे. लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है. तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं. और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है. तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं. दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे. खैर अभी नहीं, उन्होंने 2 साल की ये पीरियड दिया है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे. तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है.
1: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा. इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमरीका एक तरफ, हम उसका और ईरान का जो

0: have an impact on the industry. So that is the sentiment which drives stock markets, and therefore you are bound to see volatility in the context of geopolitical tensions. Yes, I don't think that there is any getting away from this kind of volatility, because you are going to have the market reacting to these kind of developments. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now we are up once again to over $90. So there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore the stock markets are reacting accordingly. But at the same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great, if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing at a fairly, we have continued growing at 7%, 7.5%. And despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of us, there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not to wish them away, but I think we can tackle them.
1: Sushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने भी कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटीमेंट का करेक्शन है या सेंटीमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारतीय कंपनियों में, चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है। क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
0: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है। तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की, वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए। और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं। जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
1: बहुत तेज़ी से
0: प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे। और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया, और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम इसलिए
1: आ पा रहा है
0: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में।
1: FMCG लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया FMCG।
0: बिल्कुल,
1: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात
0: है? नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है, और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये FMCG के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है, हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है, और फिर बड़े पैकेट्स कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है।
2: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
0: yes,
2: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much,
0: and, yes,
2: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
0: Yes, it. Right. I mean, that needs to be analyzed, but it could be.

0: सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षिप्त में नहीं हो सकता। हाँ, मैं सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे, हम उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे।
1: जी, सुषमा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி இரவின் மடியில். சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் தொடரும். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया. इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है. लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है. महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है. राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है. उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है. हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है. भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है.

பொங்கிடுங்கதிலே இதயத்திலே பொன்னான சந்தமா.

0: ஒலித்த முகராசி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன், பி சுசீலா. கேட்ட நிகழ்ச்சி நினைவில் நின்றவை. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा

0: की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में आसियान सचिवालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM

0: எனக்கில்லை, வேலி எனக்கில்லை. முதுமை வரும் வரையோ.
1: ஹலோ.

0: பார்த்தால் என்ன?
1: ஹலோ
0: ஹலோ.

மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம்.

0: தட்டட்டும் கைகள் ரெண்டு
1: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसद

0: को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेलों को शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष अब्राहम। PM Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak, and we have maintained this position.

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் ஷோபா கிருத்து அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரத்னா பாண்டே. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया. पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली. उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार

0: को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं और ये गर्व की बात है कि स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता शुभ्रसी महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले से ही प्रभावित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तर मैसिडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलो को सौंपी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The PM made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: Sarkar, NEET paper leak.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை சித்துக்காடு டி ஜி முருகவேல் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். மாம்பலம் எஸ்பி அருளானந்தம் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसद टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। इस कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में है। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी।

0: भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Parliament witnessed repeated disruptions for the 3rd consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Dr. Jaishankar also interacted with the ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn in Manila yesterday.